हुरमत सुना कलिया उजो बिदू ना खाए खसमे गले बराबरी फिर कर अंदर पाए उजो गए अगला मन में पाना खाए तक तक खावना तुसके ये सबात नार घूमना जल

सर्व लोच सदार हमने बंतन महीप दलतन महान धार जगमग तेज पूर्ण प्रताप अंबर जमीन जह जब तेजाब सात आकाश

पादशाह कौन जाने गुण देवे गावे ते ओए दावे सुनते ओधवे वाहिगुरु गावे ते ओए दावे सुनते ओधवे वाहिगुरु बिन से पाप घनेरे बिन से पाप घनेरे सुचिया पातशाह बिन से पाप घनेरे पैसे पड़े मगर कोई तारे वायु पैसे पड़े मगर कोई तारे वायु पाहे पारे उतारे पाहे पारे उतारे सचिया पादशाह पाहे पारे उतारे नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया।

साहेबें तेरी वड़ी आई वागुरु कहुना के साहेबें तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जन्म दिन दे खुशियां बजाओ काका कोही नूर सिंह पंज सौ रुपए आदर कर दे दीर्घ आयु दे अरोगता बख्शनी सरदार रतन सिंह अमर सिंह जी बांसरी वाले परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी।

अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा बस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद बधाई तुझे घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला।

पंचम हरख दिसाख सुनाव है, बंगालम मध माधव गाव है, ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी भांत, अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक अलाप।

चंद्र बिंब मंगलन सुहाए, सरस बान अवाहे बिनोदा, गावे हैं सरस बसंत कमोदा, अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी, उन्हें आई दीपक की बारी, कशेली पड़ मंजरी टोडी कही अलाप, कामोदी अगुजरी संग दीपक के थाप, कालंका कुंतल और रामा, कमल कुसम चंपक के नामा, गौरा ओ कांदरा कल्याणा, अष्ट पुत्र दीप

पदे गज गज करग जावे सो निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरबार अकाल देख देख पदे गुरपंथ खालसे जी दिनों दिन चढ़ दी कला रखनी सचे पातशाह जी

कई कूक काव भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कथत ही सो पुराण कई अगन।

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं रटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि।

खुकमल हरिक जगत हा विभूत दारिक दुआ मसान बास करियो करत है। खुकमट वासी लगे डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन सादी मरत है। बिंद के सदयता ही जिकी बडैया देत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है। अंगनाधीन काम क्रोध में प्रवीन एक ज्ञान के विहीन छीन कैस कै तरत है। भूत बन चारि चित छौना सब दूधा धारी पौन के हारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजय तित गौन के जय ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बटैया देत बगला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जिते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नभ के उड़ैया सोचरैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिश फिरैया तै तो भूत कह पछानी है। जल के तरय को गंगेरी सी कहत जग आग के भसैया सो जगोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ डेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जमदूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सता प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जड्डाधारी सती साजे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करी करत है। चंद्रमा शीतल न सूरस ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्ण के ते वेद और पुराण के ते समृत समूहन के होए होए बिताए है। मोहन दीम तार किते असुनी कुमार किते अंसावतार किते काल बस भय है। पीर यो पिगंबर किते गाने ना परत ते भूमि हित हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तोप ची कपट बेस पोस दी अनेक दानी वावत है। शीस कहो कह भयो मल्ल जो पिकाढ़त अनेक दंड सो तो न डंडौत अस टांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पे डर रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आदेश कहो। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो। शेष पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सोख सौ। आग को चरैया फल फूल को बछैया सद बन को भ्रमैया और दूसरो न भूख सौ। कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्ष न सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जोक सौ। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करुई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास कर काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सोंगी कहू जोगी या बैरागी बन कब हूँ सन्यास वेश बन कह दिखावई। कहूँ पवन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सौ अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पहला गावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसे बीच चीर चीर चोर डाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांस डार बूढ़ो जड गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाइये तापनाथ तापना अनेक तन गायल सहत है। जाप के किए जो पे पायत या जाप देव पूजना सदीव तुही तुही उचरत है।
नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी ढोल वो करत है आग में जरत गत रांड की परत कर पताल के बासी के भुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सुई रास करहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही कि सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओ मान सब एक पया नेक को भ्रमाओ है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू।

उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कित कछ मछ कित उनको करत भज, कित अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। कित नभ बीच अच पच को करेंगे भज, कित

रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखं अभेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परयं परा परम प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे। किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे कटे फेर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वै अविनाशी परयं परा परम पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधं स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छ विभूति न जन्मंग न मरणंग न बरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सुभूते भविख्य भवान अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अपेखंग न सत्र न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नि अच्छया अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न बरणंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न बर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न वेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध विरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तंग प्रभादनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अचयाद अविक्त यथा विभुक्तंग अचयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न वर्मंग न सर्मंग न साके न वर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न वाके न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो वाद रूपे नमो वाद रूपे। कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग।

कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देवर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ भिन्न विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज

तेज अनुभव प्रकाश या छह स्वरूप अद्वय अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनाता सन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जेह जात पात नहीं शत्रु मित्र जेह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम भेख जेह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम थाम नहीं बर्क ब्याद जेह रोग शोक नहीं शत्रु साध जेह त्रास वास नहीं देह नाथ जेह आद अंत

कई अग्न होत्र कई पवन आहार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र फच नहीं तदब देव होवत प्रतच्छ कई गीत गान गंधरा बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम कहूं अग्न होत्र कहूं तीर्थ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत बांतन विचार नहीं नैक तास पायतन पार कई तीरथ तीरथ वर्मत सोभरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायतन पार कहूं राज रीत कहूं जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मुख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरद चार कहूं करत जच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं ब्रजंत नहि तदप दास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहि तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत संगत नहि परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन

दीन जमीन जमा जे रचंग सर्व मकीन मकान जय राग न रूप न रेख रुखंग जे तापन सापन शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात वितंग जे रचयंग छत्रि छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचे उदस चार करी।

नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उद्भुजंग ये देवा देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जातन पातन जोत जुतंग जय तातन मातन ब्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जंपय किन्नर जच्छ जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच्छ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पाद गणंग भवभूत भविख भवान तुवंग जय अंडज से तज जय रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली वो मेर आकाश निवास तंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देवा देव सच्चे अंधूता भूता छूत पतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेदा भेदा छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि शरंग जय बंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा।

है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है अनाथ नाद नाद है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है नराग रंग रूप है नरोग राग रेक है अदोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पात चिहन वरण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के विके सदीव करम वरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेख अन्न मानिए न जंत्र में न तंत्र में।

है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र।

है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सूज है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र

कर्म है न भ्रम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध।

गजादपि नरादपि करंत सेवह सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त बेबिशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिये अगाध आद देव की अनाद बाद मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह।

दीन बंध प्रवीण श्री पद सर्व को करतार वरण चिहन ना चक्र जा को चक्र चिहन आकार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न वरण श्रव दाता श्रव ज्ञाता श्रव भू को भरण दुष्ट गंजन शत्रु वंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत में जयगात भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाथ श्री पद परम पुरक अभंज धर्म के अन करम

मित्र पालक शत्रु कालक दीन दयाल मुकंद अगाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व

कोटेंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत फे मुख चार आध अंत न मध जागो भूत बाप भवान सत दुआ तृतीय कलयुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यास

वो आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुघड़ा को मूर्ता कहाँ तरक अव तरक दोहरा। को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म, कवन जोग को भोग है कवन कर्म अप करम दोहरा। कहो सुसम का सो कह दम को कहा कहंत, को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा। कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन, को रोगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ जितन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान, को रोगी सोगी।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते चरासुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरे बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन मैक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अदम उदारण उर्दे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन रमक बर्दन आदि वृत्ते डावरू डवंके बबर बवंके भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अत्से जमके फुंग फनंग जय जय हो सी मैखासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंकन सुजा परंकन फणी फुंगारण जोत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरकण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भूमा कासर उर्दधे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचंदन अमृते श्रोणंत चिंती नल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्ट उपारण शुद्ध मते फणि अर्फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहते सन्नाहन अश्व प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छुर हारण धूम धुंकारण त्रप मथे दाढ़ी वृदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मैखासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे भुंगुरु घमंकण सहस्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अघमथा हे एक वृते जय जय हो सी मैखासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे।

चचरासुरमारण नरक निवारण पतितोधारण एक बटे पापान बेहंडन दोष प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानंचारे नरक निवारे पतितोधारे मुंड मथे जय जय ओसी मैखासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिलाल बदे सरधार विवरखन दुर्जन धड़खन अतुल अमरखन धरम धुजे धूमराज विदुंसन।

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम की हो आप करते बसार जद्दा बभूतन भय अनंत तव कहो जथामत त्रण तंत करता करीम कादर कृपाल अद्वय अभूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सेवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै अना सब रोग शोक तय रहत रूप अनभय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अब चल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन फेक कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजदा जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निशिदिन चरंत पायो न जाय जय पार पार दीनान दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पानहार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निशिदिन चरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संतो बाल गनी मन गारे पछ पशु नक नाक नाते सर्व समय सब को प्रतपार है पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत नहार है दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो कुरहान की रोज नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंग बेव न बेव लख्यो भ्रम श्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव धके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पतस्यो किंसरी पतमापत पाए आद अनंत अगात विक्षो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनाथम आपदाग दुख चित्र अक्षय है लोकन के करता हर्जा जल मै थल मै भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापद है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त आगे अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्री पद्मापद लय है रोगंते अर्सोगंते जल जोगंते बो भात बचावे शत्रु अनेक जलावत गावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप सम्भूहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सो बेट ही के पट बीच बचावे जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब शरण्यावे पाय सके नहीं पार प्रभाहूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो भेद कते न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब पचहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न रासाक न सूक न संग तिहारे याद अनाथ गादव्य गदवे जप्यो दिन ही गुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिर कर भेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बो न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल हैं दान के देवैया महामान के बनैया अवसान के देवैया हैं।

जुद के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पव हिंगुला हिमालय द्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साधे पौन साधना कि तेक बांधे यार बके यार बिया राधे तेरे नाम है फरा के फिरंगी मान कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरटा मंगल तेरी मन सो तपस्या करे देड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रूह के रूहेले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस न्यावे तिपते दे आए दुख देह के दलत है जिने तोह ध्यायो दिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार बल पाछ पहु चतता है जिड की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते सहस्रासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महाधीन किते व्यासे प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पहना पूर्ण को पावे पारता इते अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइय न पार पया पार के बखानीय अद्वया बिनासी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानीय जंत्र हूँ न जात जय की बाप हूँ न मायता के पूर्ण प्रभा के सुछटा के अनमानीय तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानीय तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूब को देहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पोकत है के वृद्धता की बासी है जो को हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार अवार हूँ को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलब्बी देव पूर्वी न पार पावे या सत्य अनास है देवन को देव महादेव के देव है निरंजन अभेवनाद अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छत्र नेर छपा कर कैसी छप काल निद्र के कूल के हंस निशी हरुम ही रसि हुसनाबाद गंगा कैसी दार चले सातो सिंध रूल के पारसी बलाओ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ के रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बोर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदावाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है फकरी गंधारी गोर कखरी गर्दिजाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूर्व पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठावर मैं विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र दे अता बिनाद कीरत।

जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निर्भव त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी।

पड़पड़ घड़ी लीधी है पड़पड़ पर साथ पड़पड़ बीड़ी पाई है पड़पड़ घड़ी एकाद पड़िए जेते बस बस पड़िए जेते अम्मास पड़िए जेती यार जा पड़िए जेते सास नानक लेखे एक गल हर मैं चगना चाक।

मन अल मल खाय सिर छाय पाय मुर कंध पुत गवाय बिन नावे किस्ताय न पाई रह बेबानी मड़ी मसाने अंदर न जाने फिर पुस्ताने सदगुरु भेटे सो सुख।

पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खफोए खार कूड़ कूड़े ने हलगा विसरा करतार किसनाल कीचे दोस्ती सब्जेक्ट।

सचता पर जान जा सिख सच्चे ले दया जान जिके किछ पुन दान करे सचता पर जान जा तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु कुछ कह बहरे करे निवास सच सबना।

प्रमुदार ज्ञान शिवाज बाबेर प्रसिंगार ऊचे कु कई वादा कावे जो दाका विचार मूर्ख पंडती के मतु जसन जे कर प्यार धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख दुवार जति सदावे।

0: मिलना पहला दुखदार सरोद पया जस तामना हो तुम करता करना मिलना ही जा करि ना हो बलहारी कुत बसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कल कला भरपूर तू सच्चा साहिब सिख वालो जिनकी तीस पार पया कहो नानक करते किया बात जो कुछ करना सो कर महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्रिय शब्दं सूर शब्दं